मौजू मरियाम बाप कर गए हम दूसरी से मर गत मरियाम बाप कर गए मुजुर कंटोम फाल अगली जे मंगलिम बर मचार अगर मकम बर मचार ब्रह्म मुंत्यार योर विचार से जुवाई बर मलहर बोलिम बच अमन मतम बसेन बर मार बाली बर मार येली बर मार मत गर सेन बर मार ये जर ट्राबी जॉब ये जर तुंडा तेजेन मचिलम बुद्धिस्मी अभी अमन तुम्हारी

जब संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्म बार आया मिनट गर्मी दिपे माम अगर दुखा दर समाज

कराटे बेल पछाने पलाज ये यार मेरे जलाने से मुलाने उन्हें अब इसे निपसो से ताजे दिखते हुआ तेरे सुरेश जोनाथन